खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो, हा हा हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुम तो लेने दो, आ हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुम तो ले

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

फिर मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।